0: खाती हला हे दिलियाली हम आला दिले बने ई खाती हाले हम आला दिलियाली खाती आला हे के दिलियाली बाहने बने वेले वासु ते बड़ा खड़ा रवा लिबा हे मेने ले थे खाती लाले सोए नवतल दिन अशुद्ध बल यीशु स्वामी के नाम में फले आऊ
1: देखे नामा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हमला के दियाले हमा तेरे
1: बे दे दे रवा दिला हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले मा दिलिया ले ओबर सुदी वेवा स्वामी इन बात ओ बात सी उदाउ करन ने किने कनाट